नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन कहो सब गुण सुख दियो सतरन कहो पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत

को मन जाने मन कोए। पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दर गहमान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुरे एक त्याम जे को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार तौ धर्म दया का पूत संतोख था प्रख्या जिन सूत जे को बुझे होवै सचियार तवले उपर केता भार धरती होर पराए होर तिस्ते भार तलै कवन जोर जी जा तिरंगा के नाव। सबना लिखिया बुड़ी कलाम मेहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सुवाले हो रूप केती दात जाने कौन कूत किता पसाओ एको कवाओ तस्ते हुए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वार या न जावा एक वार जो तुत पावै साई परिकार तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुखवेद पाठ असंख जोग मन रहे हे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भख सार असंख मोहन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार।

असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख मर कर जाहि जोर असंगल बढ़ हत्या कमाहि असंख पापी पाप कर जाहि असंख कूड़िया और कूड़े फिराहि असंख मलेश मल पख खाहि।

तीर्थ तप दया दत्त दान जेको पावै तिनका मान सुनया मन्या मन कीता भाव अंतरगत तीर्थ मलनाव सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत ना होए सुअस्त आत बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिर उत्ती माफ कवन जित हो आया कार वेल न पाया पणती जे हो वै लेख पुराण वक्त न पायो का दिया जे लिखन लेख पुराण थित वार ना जोगी जाने रुत माह ना कोई जा करता सठी कौ साजे आपे जाने सोई किव कर आखा।

अरूप है अनूप है अजू है अभू है अरेख है अपेख है नाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अबर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है अरफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजान है अल्लाह है अजहा है अनंत है महंत है

सर्व पाली नमो सर्व गौणी नमो सर्व पौणी अनंगी अनाथे नृसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रभंगी परमाथे समस्ती में भूते कलंकं बिना कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सुन परम रूपे नमो जोग जोगे सुन परम सिद्धे नमो राज राजे सुन परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणी नमो अस्त्रमाणि नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता पेखीय परमीय भोगीय भोगते नमो जोग जोगे सुन परम जोगते

आत्मिक पुरुख अपार सर्वलायक सर्व कायक सर्व को प्रतिपार सर्वगंता सर्वहंता सर्वदेन बेग सर्वसा

0: चत्र चक्र करता चत्र चक्र हरता चत्र चक्र दाने चत्र चक्र जाने चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती चत्र चक्र बाले चत्र चक्र काले चत्र चक्र पासे
1: चत्र चक्र वासे चत्र

नचत्रय नमित्रय परे हैं पवित्रय परथी सयादि सयादृशया कृसय भगवती शांत्वय प्रसाद काते कि आशिज दे से क्या भिज भेस है क्या अगन कर्म है क्या भन परम है क्या भिज लोक है क्या आदित सुख है क्या अवधूत वर्ण के बेभूत करने के राज प्रभ है धर्म तुझा है क्या अशोक वर्ण के सर्वा परण है कि जगतं कृति है क्षत्रं क्षत्रिय के ब्रह्म स्वरूप के अनुभव रूपे के आदा देव है कि आप अपेव है कि चित्रम महीने के क्या दीने के रोजी रजा के रही मेरे हक के पाक भी ऐब है कि गैबुल गैब है कि अबुल गुना है कि सहान शाह है कि कारण को निंद है कि रोजी देहन है कि राज करही मैं किरा कर्म करी मैं कि सर्वं कली है कि सर्वं दली है कि सर्वत्र मानी है कि सर्वत्र दानी है कि सर्वत्र दुगौण है कि सर्वत्र पौन है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है कि सर्वत्र राज है कि सर्वत्र साज है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जा हो कि सर्वत्र पा हो कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र भेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र मानिय सदैव प्रधानिय कहे सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पहन है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलिमे के परम महिमे के आकल अलामे के साहिब कलम है के उसनुल वजू है तमामुल रुजू है हमेशुल सलाम है सलीखत मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस

सर्वंगंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंहर्ता सर्वंकर्ता सर्वंप्राण सर्वंत्राण सर्वंकर्म सर्वंधर्म सर्वंयुक्ता सर्वंमुक्ता प्रसावलशंत प्रसाद नमो नरकनाशे सदैव प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथम परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वभंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तत न मत न जात न पात नृसाक अमितो अमीक सुदैव प्रवाह अजय अजा है।

करुणाल है और काल है, खल खंडन है, मैं मंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उबारण है, तृत के तन है, जग के कर्ण है, मन मानी है, जग जानी है, सर्वंपर है, सर्वंकर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणा कर है, विश्वंपर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंड से खल खंड से परते पर है, करुणा कर है, अजप जप है, अथप थप है, अकृता कृत है, अमृता अमृत है, अमृता अमृत है, करुणा कृत है, अकृता कृत है, धरणी तृत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृत है, अमृता अमृत है, अजवा कृत है, अमृता अमृत है, नरनायक है, खलकायक है, विश्वंपर है, करुणालय है, नृपनायक है, स्वर्पायक है, पापंजन है, आर गंजन है, रिपतापन है, निपजापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृत है, कर्ता कर है, हरता हर है, परमात्म है, सर्वात्म है, आत्मस है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंद

ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब बैस जिन प्रेम की उतन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लखियो हर अवाची दिशा मैं काहू पशाह को सीस निवायो।

नमस्कार तुसही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पलमो मत कियो।

संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिछाने कट कट के पट पट की जाने जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा तर तब दे अपारा जमया कर्ख कर तो

एकै रूप अनूप सुरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेतज कीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर अकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपवे आजुगा स्वरूप सुयंपव।

0: कृपा दृष्टि तुम जाहिने हरि हुत्था के ताप तन कमहे हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्याश्व सके न कोई।
1: एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहि उबारा जिन नर नाम ते हारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत में शरण ते हारी आप हाथ दैले उबारी सर्व ठाउर मोहो सहाई दुष्ट दोख ते देव बचाई। कृपा करी

सुनय कुंगुजो याहि सुरसन पावई सुनय मूर्ति तलाय चतुरता आवई दुख दर्द भाव निक न तिन नर के रह हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत 1700 कह जय भाद्रव सुधी अष्टमी रविवार तीर सुद्रव ग्रंथ सुधारा सुवैया।

कथ की करह कहानी, करह कहानी कथ केरी के द्वारे पाई है। तन मन तन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्नी है पाई है। हुक्म मन्ने हो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी, कह नानक सुनो संत हो कथे हो अकथ कहानी।

सब लाथे पाप को माते गुण गोविंद नित गाइए साध संग मिल त्याइए मन बाशत फल पाए गुर पूरा हृदय ते आए गुरु गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया गुर गोपाल आनंदा।

राम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छा साज रहे सबको सच समावे। ऋग कहे रहया भरपूर राम नाम देवा मैं सूर न लै प्रशत जाहे। नानक तो मुख अंतर पाए जुज मैं जो

प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्दोता गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार यो करे तेरा कारज सब सुवारणा

सारा दुख हंता सुख रास ताकाओ बिघन न को लागै जाकी प्रभु आगे अरदास। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाये वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाये। अर्जन हर गोविंदनो सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करनाओ निधावै ताहे सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके। खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरू। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसां सवासां संग निभाई तिन्हां शहीद सिंघां सिंघणियां दी कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी। प्रथमें सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देख देख फतेह। बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाये। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी। बख्शो जी सिखानू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार खालसा जी साहिब बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दे राखे आप अकाल पुरख। हे अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो। गुरद्वारा श्री ननकाणा साहिब होर गुरद्वारे गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण नितानियां दे तान नेउटियां दी ओट नियासरियां दे आसरा धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। आप जीआं दे पावन चरणां च अरदास बेनती है। जन्म मरण दोहु मैं नाहीं जन पर उपकारी आए। जी दान दे भगती लायन हर स्यों लैन मिलाए। आप जी दे दरों करों वरोसाए होए। महापुरख बाबा भागो जी दी सलाना याद नूं मुख रखदिया होया नगर बल्ला अते समूह इलाका निवासी संगतां वलों साध संग दे सहयोग दे नाल आप जी दे पावन स्थान विखे तुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई जी दे श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ किए जा रहे हैं। सतगुरु कृपा करो आग्ञा बख्शिश करनी गुरु गरीब नवाज पिता जी सारे सेवादारां दे सिर ते मेहर परे हाथ रख के तीनों दिन आप जी ने अपनी सेवा आप लै लैनी रहमतां करनियां गुरु गरीब नवाज पिता जी ओ। समूह इलाका निवासी संगतां ते नगर बल्लां दीयां संगतां दे सिर ते
ਮਿਹਰ ਪਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ, ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਦਾਤ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀਓ, ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਚਿਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ।

रहे लिव लाई रहा हो। हर संतो देखो नदरकार निकट वसै भरपूर गुरमत जिनी पछाणिया से देखै सदा हदूर जिन गुण तिन साध मन वसै ओ गुणवंत्या दूर मनमुख गुण ते बाहर है बिन नावै मरद चूर जिन शब्द गुरु सुन मन्या तिन मन त्याया हर सोए अंदन भगती रत्या मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कुसंभ का बिनस जाए दुख रोए जिस अंदर नाम प्रगास है ओ सदा सदा थिर होए इहो जन्म पदार्थ पाए कै हर नाम ना चितै लिव लाए पग खिसिए रहना नहीं आगे ठौर न पाए ओ वेला हथ ना आवई अंत गया पछताए जिस नदर करै सो उपरै हर सेती लिव लाए देखा देखी सब करै मन मुख बूझ न पाए जिन गुरमुख हिरदा सुध है सेव पई तिन थाए हर गुण गावै हर नित पड़ै हर गुण गाए समाए नानक तिन की बाणी सदा सच है जे नाम रहे लिव लाए। श्री राग महला तीजा जिन्नी एक मन नाम त्याया गुरमति विचार तिनकै मुख सद उजलै तित सच्चे दरबार।

मनमुख नाम न जाननी बिना वे पत जाए, शब्द साधना आयो लागे दूजे पाए, विष्टा के कीड़े पवे विच विष्टा से विष्टा माहे समाए। तिनका जन्म सफल है जो चल सतगुर पाए, कुल उधारे अपना तन जनेंदी माए।

सतगुर मिलिए तन पाया। हर नामा हृदय समाल, नाम रतै सी निर्मलै गुर कै सहज सुपाई। मन तन रता रंग स्यों रसना रसन रसाई। नानक रंग ना उतरै जो हर तुर छोड़िया लाई। श्री राग महला तीजा, गुरमुख कृपा करै भगत की जय। बिन गुर भगत ना होई, आपे आप मिलाए बूझै ता निर्मल होवै सोई। हर जियो साचा साची बाणी, शब्द मिलावा होई। पाई रे भगतहीन काहे जग आया, पूरे गुरु की सेवना किन्नी बिरथा जन्म गवाया। राओ आपे जग जीवन सुखदाता, आपे बक्स मिलाए। जी जंत ए क्या विचारे, क्या को आख सुनाए। गुरमुख आपे दे बढ़ाई, आपे सेव कराए। देख कुटुंब मोहे लुभाणा, चलद्या नाल न जाई। सतगुर सेव गुण निधान पाया, तिसदी कीम न पाई। हर प्रभ सखा मीत प्रभ मेरा, अंतै होए सखाई। अपने मन चित कहे कहाए, बिन गुरे आप न जाई। हर जियो दाता भगत बशल है, कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा सुरत दे प्रभ, आपे गुरमुख दे वड्याई। श्री राग महला तीजा, धन जननी जिन जाया, धन पिता प्रधान। सतगुर सेव सुख पाया, विचो गया गुमान। दर सेवन संत जन खड़ै, पायन गुणी निधान। मेरे मन गुरमुख त्याए, हर सोए। गुर का शब्द मन वसै, मंथन निर्मल होए। रहाओ कर कृपा कर आया, आपे मिलिया आए। गुर सबदी सलाही है, रंगे सहज सुभाए। सच्चा सच समाया, मिल रहे न विचड़ जाए। जो किश करना सो कर रहया, अवरना करना जाए। चिरी बशुन्ने मिलियन, सतगुर पन्ने पाए। आपे कार कराए सी, अवरना करना जाए। मन तन रता रंग स्यो, हमें तज विकार। अहनस हृदय रव रहै, निरपौ नाम निरंकार। नानक आप मिलायन, पूरै शब्द अपार। श्री राग महला तीजा, गोविंद गुणी निधान है, अंत न पाया जाए। कथनी बदनी ना पाइए, हमें विचो जाए। सतगुर मिलिए सद भै रचै, आप बसै मन आए। भाई रे गुरमुख बूझै कोए, बिन बूझै कर्म कमावणै। जन्म पदार्थ खोए। रहाओ

तीजा किस हो सेवी क्या जप करी सतगुर पूछो जाए सतगुर का भाणा मन लई विचो आप गवाए एहा सेवा चाकरी नाम वसे मन आए नामे ही ते सुख पाई है सच्चे शब्द सुहाए मन मेरे आनंदन जाग हर चेत अपनी खेती रख लै कूंज पड़ेगी खेत रहाओ मन की आयशा पूरिया शब्द रहया भरपूर पै पाए भगत करै दिन।

चलाई। एता ताण हुवे मने अंतर करें पे आख कराई। जेवड़ साहब तेड़ी दाती दे दे करे रचाई। नानक नजर करे जिस ऊपर सच नाम वड़ियाए मैला दूजा। आखने आख न रजिया सुन न रजे कन अखी देख न रजिया गुण गाहे किकवन। भुखिया भुख न उतरै गली भुख न जाए नानक भुखा तार जै जै गुण कै गुणी समाए पाड़ी। बिन सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाईऐ बिन सच्चे कुड़ियार बन चलाईऐ बिन सच्चे तन शार शार रलाईऐ बिन सच्चे सब भुख ज पैंजे खाईऐ बिन सच्चे दरबार कूड़ न पाईऐ कूड़े लाल जलग मैल खुआईऐ। सब जग ठगियो ठग आइए जाइऐ तन में तिशना अग शब्द बुझाईऐ। शोक मोहल्ला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरा सदा पक्कै करम त्यान। पत के साध खांदा लहै दाना के सरदान मैला पहला। सोने का बिरख पत पर वाला फुल जबे हर लाल तित फल रतन लगे मुख भागत निहरदे हृदय निहाल। नानक कर्म होवे मुख मस्तक लिखिया होवे लेख अड़सर तीर्थ गुर की चरणी पूजे सदा बसे। हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग पवे दंजे नानका तरिए करमी लग पौड़ी। जीव दिया मुरमार न पछोताई है झूठा इस संसार किन समझाई है। सच न तरे प्यार तंदे ताई है काल बुरा खै काल सिर दुनियाई है। हुक्मी सिरे जिंदार मरे दाई है आपे दे प्यार मन वसाई है। मोहत न चछा विलम परिये पाईए गुर प्रसादी बुझ सच समाईए। श्लोक मोहल्ला पहला तुम्मी तुम्मा विस अख ततूरा निम फल मनमुख वसे तिस जिस तू चित न आवी। नानक कहिए किस हंडन कर्मा बारे मैल पहल महला पहला। मत पखेरु किरत साथ कब उत्तम कब नीच कब चंदन कब अक डाल कब ऊची प्रीत। नानक हुक्म चलाईऐ साहब लगी रीत पौड़ी। केते कहें बखाण कह कह जावना वेद कहें बख्याण अंत न पावना। पढ़िए नाही भेद बुझिए पावना खड़ दर्शन कह भेख किसे सच समावना। सच्चा पुरख लख शब्द सुहावना मन्ने नौ बिसंख दरगै पावना। काल को आदेश ढाडी गावना नानक जुग जुग एक मन वसावना। शोक मोहल्ला दूजा मंत्री होए अठुआ नागी लग जाए अपन हथी अपने दे कूचा आपे लाए। हुक्म पया तुर खसम का तीहू धक्का खाए गुरमुख सिओ मनमुख अड़ै डूबे हक न्याय। दोहां सिरिया आपे खसम वेखे कर व्योपाए नानके में जानिए सब कुछ तिसे रजाए मैला दूजा। नानक परखे आपको ता पारख जान रोग दारू दो में बुझै ता वैद सजान। वाट न करी मावला जाने मेहमान भूल जान गल्ला करे हाण लाए हाण। लब न चली सच रहे सोविष्ट परवान सरसंदे अगास को क्यों पहुँचे बाण। अगे हो अगम है वहेंद्र जान पौड़ी। नारी पुरख प्यार प्रेम शिंगारिया कन भगत दिन रात नरैनी वारिया। मैला मांझन वाह शब्द सवारियाँ सच कहने अरदास से विचारियाँ। सोहन खसमे पास हुक्म सुधारियां सखी कहने अरदास मनो प्यारियां।
ਵਿੜਨਾ ਮਿਤ੍ਰਿਕ ਵਾਸ ਫਿੱਟ ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੀ ਅਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ।